Rosie and Williams Parkway member, Jodh Golden Gate Plaza में, Brampton में, Alpha Optical, any age, any stage, जी हाँ, आपकी specials देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए, आंखों को चेक करवाने के लिए, appointment के लिए 905-450 Skype दी थी, पर कॉल कीजिए 905-456-0733, Alpha Optical, your vision is your business.

0: last days of Ronan Duff, Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 905-458-6808
2: जस्मी कभी बात बेनती चौपाई

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 ते 016-213-1165

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजं सूर्यगुं

0: दृष्टं मधुरं तीष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
1: मण्डलम् रामचन्द्रम् इति यानम् चन्द्रम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरम् पूषा महापातकनाशनम् ध्यात्वालोत्पल श्यामम् रामम् राजीवलोचनम् जानकीलक्ष्मणमपेतम् जटामुकुटमण्डितम् साधितूलधनुर्बाणम् पाणिनर्तम् च रान्तकम् स्वलीला जगद्रासु माविर्भूतमजविभुम् राम रक्षा पठेत् प्राज्ञा पापम् सर्वम् काम्नम् शिरोमेधाङ्गो पातु बालम् दशतात्मजा कौसल्यो दृश पातु विश्वमित्रपयोष्णति ग्रहणम् पातु मखकाता मुखम् सौमित्रवत्सला जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठम् पर्तम् तत्कन्दुदिव्यायुध पातु भुजमग्नेशकारमुख करु सीतापति पातु हृदय जाम् दग्नयुद्मध्यम् पातु खरध्वंसीनाम्बिजाम्बुवदश्रयः सुग्रीवेशकटिपातु शक्तिनिहन्मत्प्रभु उर्ध्वविक्तम् पातु रक्षकुल्लाशकृत ज्ञाननिषेधकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तकः सुविषणश्रित पातु रामखल्वपु पिता राम बलोपेता रक्षा सुगृहपटे सचिरायु सुखी पुत्री विजय विनय भरतार्भुतलव्योमचारिण जन्मचारिण दशमपि शब्दात् रक्षित राम नाम विरामेति राम भद्रेति रामचन्द्रेति वासर नरण लिपते पातर्मुक्तिर्मुक्ति च विन्दति जगज्जेत्रैकमन्त्रेण राम नाम रक्षितव्यखण्डधारित सकलसहस्र सिद्ध वज्रपज्जलनामेदं राम कक्षस्वर्गवैतान्य सर्वत्र अस्ति जय मङ्गलम् आदिष्टवन्य ृतम् प्रार्थना प्रबुद्धबुधि कौशिक आराम कल्पवृक्षाणाम श्रीलोकानामेश्रीमन्तरूप सम्पन्न सुकुमार महाबल पुण्डरीक विशालाक्ष चिरकृष्णाजिनाम्बरफलमुदशीलदान्त तापस्वब्रह्मचारिणो पुत्र दशरथस्थैतो भ्रातरो राम लक्ष्मण शरण्य सरस्वतान श्रेष्ठ सर्वधर्षदाम रक्षिकुल्यहन्धारो त्रायतानुरवितम आत्मसजदर्शाविस्पृशाः वक्ष्याशु विनिशं सङ्गिनो दक्षिणामम् राम लक्ष्मणाभग्रतापत्सजगृशताम् स्कन्दकौचिखविचापबाणधर्युव गच्छन्मनुरस्माकम् राम पातु सुलक्ष्मण राम दशरथीशुर लक्ष्मणानुचर्वरि काकुत्सपुरुषपूर्ण कौसल्योरवितम वेदान्तवेदि अद्वेष प्राणपुरुषोत्तम जाष्टवल्भं श्रीमान् सर्वत्राक्रमितेञ्ज पन्नित्य मत्व दशरथ्या निदर्शमेधादिकं पुण्यः सम्प्राप्तते संशाराम दुर्वादल श्यामं पद्मांशं पितरसदं स्तोन्ति नाम सर्वेण ते संसारेण नररामलक्ष्मण पुरुषमुर्गुरु सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करणानं गुणादिमे प्रत्यं धारिणं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथनं श्यामं ख्यातमस्ति वन्द्यलोकमिरं रघुतिलकं राघवं रावणार्यं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विद्युसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः श्रीराम राम राम नन्दन राम राम श्रीराम राम भक्तागिरि राम राम श्रीराम राम रण कर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं गो राम राम श्रीरामचन्द्र चरण मंसात्मरामे श्रीरामचन्द्र चरण वत्सात्मरामे श्रीचन्द्र चरण शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरण शरणं प्रपद्ये माता रामो मतिता रामचन्द्र स्वामी राम रामचन्द्र सर्वस्वामी रामचन्द्र जान नान जाने वजाने न जाने दक्षिण लक्ष्मण ये स्वामी दुजन कात्मजा पूर्तम आर्तिरिय से सौंदरम नंदनो मंदिर लोकम राम प्रणरंग दिय राजे नेतरम रघुवंशनाथम कारण रूप नकरंदन श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये वंद्यमान तुल्य वेगम नितेन्द्रम बुद्धिमताम वरिष्ठम वादत्मजमान द्युतमुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये कुजंत राम रामेति मधुरम मधुरासनम आधुनिक कशाका वंदे वाल्मीकि कोकिल आपदा प्रतारम दातारम सरसम नामंदे लोकाभिनवम नमामि वर्णनम विजय नामजम संपदम तर्जम्यम दूतम राम रामेति गर्जनम रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामायणाभूतानि शाचर्चम रामाय तस्मिन् नमः रामायणस्य प्रायणम परतरम रामस्य दासोऽस्मिहम रामे चित्तले सदा भवतु भो रामामुदर राम रामेति रामेति राम राम मनोरम सोत्र राम तत्तुल्यम राम नम्बरानने इति श्रीबुद्धिकौशिकविरचितं श्रीराम रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणम्।

सप्तश्लोकी तुला शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी करोमि कार्य सिद्ध्यर्थम्।

सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय अली मदद। और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, घर संसार, और मैं हूँ आपकी दोस्त मीरा। तो हमारा आपका हर वीकेंड में हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, सैटरडे संडे को, और शाम जो सैटरडे की शाम जो सभी के लिए बहुत ही सुहावनी होती है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, आजकल के सावन के महीने में। तो आजकल सावन का महीना चल रहा है और सोमवार जो है, दो सोमवार जो लोग व्रत रखते हैं सावन के महीने के सोमवारों का, तो ये जो है आपके लिए सावन का महीना है। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, शंकर भगवान को की पूजा का पूरा महीना है। तो और झूले पड़ते हैं इंडिया में, तो बहुत ही बढ़िया पूरे बनाए जाते हैं गुड़ के, आप जानते हो पूरे क्या होते हैं। तो खूब फेस्टिव सा, यहाँ भी अभी तो लोग पिकनिक्स करते हैं, सभी लोग पूरे बनाते हैं जिस दिन बारिश होती है, तो इस तरह से अपना मनोरंजन वो बनाए रखते हैं किसी ना किसी तरीके से दोस्तों मित्रों के साथ वीकेंड में खास करके। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, और साथ में आपने बहुत बढ़िया किस्म की आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर के साथ बढ़िया टीवी चाहिए, और आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, किचन के गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अपनी सिस्टर को बढ़िया सी गिफ्ट लेके देनी है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देखें, और फिर आपको ऑर्डर बुक करना है तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स का कॉल कीजिए, वो कैनेडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, 416-524-8004 आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से नंबर ले लीजिए, 416-524-6704, HK मूवर्स। अब अगर लंदन आसपास के इलाके में आप रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए और आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिएगा। तो अब आपने अगर लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ लेनी है आपको राखी के लिए, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए। आप किचन और बाटल लुगवाक में रहते हैं, घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो नसीब खंड को कॉल कीजिए, 519-546-1260 पे आप नसीब खंड को कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव कुकिंग करवानी है, डिनर लंच करना है, तो न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया स्वीट रेस्टोरेंट, राखी के लिए आपको मिठाइयाँ लेनी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया भी मौजूद है, और जानकारी के लिए आप 905-814-1780 पर कॉल कीजिए, 905-814-1730 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको 80s की दौर में ले चलते हैं, तो डिंपल कपाडिया, ऋषि कपूर, आइए ये गीत, तो रोमांटिक सा गीत।

0: हेलो, फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आपकी कोई खास पिकनिक होने वाली है या कोई और प्रोग्राम होने वाला है तो आप जरूर हमें बता सकते हो और ईमेल कर सकते हो gharsansarradio@gmail.com, तो हम यहाँ पे अनाउंस कर देंगे। आपका कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम हो तो जरूर बताइएगा, हमारा हम जरूर शेयर करेंगे अपने लिसनर्स के साथ। जो लिसनर्स हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगस्त में ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और अगस्त 25-30 साल हो गए हैं प्रोग्राम को चलते हुए। आपकी दया से, कृपा से, स्पॉन्सर्स की दया से, कृपा से, कोऑपरेशन से, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी अपनी बहन को लेके देना चाहते हो राखी के लिए, या और कोई गैजेट किचन की बढ़िया बढ़िया, आजकल तो बढ़िया एडवांस गैजेट्स आ गए हैं, रोटी मेकर ये वो, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए या किसी तरह का भी आपको बारबेक्यू चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर आप अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो सारे कनाडा भर में मूव होने के लिए उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-404 416-524-6704 पे आप कॉल कर सकते हो HK मूवर्स को। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, आप खुशवंत सिंह बैस को कॉल कीजिए 416-677-1313 416-677-1313 पे आप कॉल कर सकते हो। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, तो आइए अब आपको ये भी बड़ा रोमांचक
1: जब तुम साथ।

ये जो गाना था बड़ा जैसे बड़ा मीनिंगफुल है, ये आपके लिए उस्ताद राशिद खान की तरफ से पेश किया गया, करीना कपूर शाहिद कपूर जब वी मेट मूवी, उसी का ये गाना है। तो बड़ा ही रोमांटिक भी है और साथ में बड़ा मीनिंगफुल भी है। तो मूवी ये जो थी जब वी मेट रियली नाइस मूवी, आपको अगर मौका मिले जरूर देखना, सजेस्ट कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मेरी पसंद आपकी की पसंद आपकी भी पसंद हो, लेकिन कई बार बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ होती है। अब अगर आप किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी है कितना वाटर में, तो आप नसीब थिएटर को कॉल कीजिए 519-542-1260 पे कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। तो राजेश खन्ना, आरजी वर्मा, किशोर कुमार।

0: Big one who say
1: traveling to 100 countries, I have learned how to avoid some serious headaches. After a
0: सभी का एक बार फिर से घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एच मूवर को कॉल कीजिए 416-524-8004 416-524-6704। और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया प्राइस, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप अपनी पसंद कीजिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल करिए 905-749-0045-905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन में रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी वाली खबर है कि अब आपके लिए जो मास्टर कोलिजन डी टू वाले हैं वहाँ पे खुल चुके हैं। आपने किसी किस्म की भी आपको आपने किसी किस्म की भी कोलिजन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक नए जैसा बना देते हैं, तो गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, तो आप मास्टर कोलिजन डी टू डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको एक और बढ़िया प्यारा सा गीत सुनाते हैं। इसमें जो है कि एक सिंगर जो है एक वो लवर जो है वो थोड़ा प्रेडिकमेंट में है। सुनिए किस तरह की प्रेडिकमेंट है।
2: या चुप रहो
0: नीतू कपूर और शशि कपूर
2: क्या है।

आपका स्वागत है घर संसार में। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 6477737640। अगर आपके यहाँ शादी है, आपको बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी चाहिए, वॉचेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तो आप कॉल कर लेना 6477737640। और जब फिर आपने शादी में लोगों को गिफ्ट देना है तो उसमें भी उसके लिए भी आपके बढ़िया बढ़िया आप गिफ्ट दे सकते हो बड़े रीजनेबल प्राइसेस में। आप कॉल कर सकते हो आप 6477737640। मैं बताना चाहती हूँ कि एक ज़माना था कि पहले पहले लोग ना लड़कियों को ज़्यादा, जैसे कि यहाँ कनाडा में आने के बाद भी लोगों को ये था कि लड़कियाँ ज़्यादा उनको नहीं होना चाहिए ये जो मीडिया के दुनिया में, तो बहुत जैसे जो लड़कियाँ रेडियो प्रोग्राम करती थी 70s में, 80s में, 90s में बहुत कम लड़कियाँ थी। आजकल तो मीडिया के उनकी एजुकेशन हो गई है तो बहुत सारी लड़कियाँ आगे आ गई हैं और बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम दे रही हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करती हैं, बहुत कमाल के रेडियो प्रोग्राम करती हैं। मैं उनके प्रोग्राम सुनती हूँ तो उनको सराहती हूँ कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि औरतें आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, तो ये भी एक बड़ी खुशी वाली बात है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी एक पॉजिटिव नोट। तो आइए आपको ये प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। सारे खंड का जुड़ गए।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। हैव ए वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड एंजॉय योर टाइम। व्हाटएवर यू डू मस्ट डू सम एक्सरसाइज। गिव योरसेल्फ सम टाइम। अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए अपनी देखभाल करने के लिए। प्रोग्राम बनाना चाहिए, अपने खाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर आप अपनी देखभाल करोगे तो आपके आसपास वाले भी, दुनिया वाले भी आपकी जरूर देखभाल करेंगे। सो इसी नोट के साथ नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वास्थ्य कला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

जकूजी एंड विलियम्स पार्क में वह मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-7 पर कॉल कीजिए 905-456-7733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: last days of Ronan Dot Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 905-458-6808

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देव

ओम नमः ओम रीम कर्जनीभ्याम नमः ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः ओम रीम अनामिकाभ्याम नमः ओम रूम कनिष्ठिकाभ्याम नमः।

कायै वषट् ॐ ह्रैं कवचाय हुं ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट् ॐ ह्राः अस्त्राय फट् पठ ध्यानम् वामेकरे वैरवहं महन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाख्यम् दधानमाख्यामात सुवर्णभरणम् भजीचुरत्कुण्डलमाञ्जनीयम् नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रलयकारानर प्रभाच्युरत्तापवत्सदेहाय अञ्जनी गर्भसम्भूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्षराक्षस ग्रहबन्धनाय भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह दाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बन्धनाय एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जना सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून्मापय मापय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून्भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं कृत्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन्

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो हमारा आपका हर वीकेंड में हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, सैटरडे संडे को, और शाम जो सैटरडे की शाम जो सभी के लिए बहुत ही सुहावनी होती है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, आजकल के सावन के महीने में। तो आजकल सावन का महीना चल रहा है और सोमवार जो है, दो सोमवार जो लोग व्रत रखते हैं सावन के महीने के सोमवारों का, तो ये जो है आपके लिए सावन का महीना है। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, शंकर भगवान को की पूजा का पूरा महीना है। तो और झूले पड़ते हैं इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया, पूरे बनाए जाते हैं गुड़ के, आप जानते हो पूरे क्या होते हैं। तो खूब फेस्टिव सा, यहाँ भी अभी तो लोग पिकनिक्स करते हैं, सभी लोग पूरे बनाते हैं जिस दिन बारिश होती है, तो इस तरह से अपना मनोरंजन वो बनाए रखते हैं किसी ना किसी तरीके से, दोस्तों मित्रों के साथ वीकेंड में खास करके। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, और साथ में आपने बहुत बढ़िया किस्म की आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर के साथ बढ़िया टीवी चाहिए, और आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, किचन के गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अपनी सिस्टर को बढ़िया सी गिफ्ट लेके देनी है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देखिए, और फिर आपको ऑर्डर बुक करना है तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स का कॉल कीजिए, वो कैनेडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, 416-524-804 आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से नंबर ले लीजिए, 416-524-6704, HK मूवर्स। अब अगर लंदन आसपास के इलाके में आप रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए और आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिएगा। तो अब आपने अगर लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ लेनी है आपको राखी के लिए, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए। आप किचन और बाटल लोग में रहते हैं, घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो नसीब फील्ड को कॉल कीजिए, 519-546-1260 पे आप नसीब फील्ड को कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव कुकिंग करवानी है, डिनर लंच करना है, तो न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, राखी के लिए आपको मिठाइयाँ लेनी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया भी मौजूद है, और जानकारी के लिए आप 905-814-1703 पर कॉल कीजिए, 905-814-1730 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको 80s की दौर में ले चलते हैं, तो डिंपल कपाड़िया, ऋषि कपूर, आइए ये गीत, तो रोमांटिक सा गीत।

है एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आपकी कोई खास पिकनिक होने वाली है या कोई और प्रोग्राम होने वाला है तो आप जरूर हमें बता सकते हो और ईमेल कर सकते हो gharsansarradio@gmail.com, तो हम यहाँ पे अनाउंस कर देंगे। आपका कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम हो तो जरूर बताइएगा, हम जरूर शेयर करेंगे अपने लिसनर्स के साथ। जो लिसनर्स हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगस्त में ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और अगस्त 25-30 साल हो गए हैं प्रोग्राम को चलते हुए। आपकी दया से, कृपा से, स्पॉन्सर्स की दया से, कृपा से, कोऑपरेशन से, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी अपनी बहन को लेके जाना चाहते हो राखी के लिए या और कोई गैजेट्स, किचन की बढ़िया बढ़िया आजकल तो बढ़िया एडवांस गैजेट्स आ गई हैं, रोटी मेकर एंड ये वो, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए या किसी तरह का भी आपको बारबेक्यू चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर आप अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो सारे कनाडा भर में मूव होने के लिए उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4 पे आप कॉल कर सकते हो HK मूवर्स को। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-677-1313 पे आप कॉल कर सकते हो। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, तो आइए अब आपको ये भी बड़ा रोमांचक।

जो गाना था बड़ा जैसे बड़ा मीनिंगफुल है, ये आपके लिए उस्ताद रशीद खान की तरफ से पेश किया गया, करीना कपूर शाहिद कपूर जब वी मेट मूवी, उसी का ये गाना है। तो बड़ा ही रोमांटिक भी है और साथ में बड़ा मीनिंगफुल भी है। तो मूवी ये जो थी जब वी मेट रियली नाइस मूवी, आपको अगर मौका मिले जरूर देखना, सजेस्ट कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मेरी पसंद आपकी की पसंद आपकी भी पसंद हो, लेकिन कई बार बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ होती है। अब अगर आप किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है बेचनी है कितना वाटर में, तो आप नसीब थिएटर को कॉल कीजिए 519-542-1260 पे कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। तो राजेश खन्ना, आर डी वर्मा, किशोर कुमार।

0: After traveling 100 countries, I have learned how to avoid some serious headaches. After a
1: एक बार फिर से घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एच के मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-8004 416-524-6704। और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया प्राइस, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप अपनी पसंद कीजिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल करिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन में रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी वाली खबर है कि अब आपके लिए जो मास्टर कोलिजन की टू वाले हैं वहाँ पे खुल चुके हैं। आपने किसी किस्म की भी कोलिजन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक नए जैसा बना देते हैं, तो गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, तो आप मास्टर कोलिजन डिपू .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको एक और बढ़िया प्यारा सा गीत सुनाते हैं। इसमें जो है कि एक सिंगर जो है एक वो लवर जो है वो थोड़ा प्रेडिकमेंट में है। सुनिए किस तरह की प्रेडिकमेंट है।
2: या चुप रहो
1: नीतू कपूर और शशि कपूर
2: क्या है।

आपका स्वागत है घर संसार में। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 6477737640। अगर आपके यहाँ शादी है, आपको बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी चाहिए, वॉचेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तो आप कॉल कर लेना 6477737640। और जब फिर आपने शादी में लोगों को गिफ्ट देना है तो उसमें भी उसके लिए भी आपके बढ़िया बढ़िया आप गिफ्ट दे सकते हो बड़े रीजनेबल प्राइसेस में। आप कॉल कर सकते हो आप 6477737640। मैं बताना चाहती हूँ कि एक ज़माना था कि पहले पहले लोग ना लड़कियों को ज़्यादा, जैसे कि यहाँ कनाडा में आने के बाद भी लोगों को ये था कि लड़कियाँ ज़्यादा उनको नहीं होना चाहिए ये जो मीडिया के दुनिया में। तो बहुत जैसे जो लड़कियाँ रेडियो प्रोग्राम करती थी 70s में 80s में 90s में बहुत कम लड़कियाँ थी। आजकल तो मीडिया के उनकी एजुकेशन हो गई है तो बहुत सारी लड़कियाँ आगे आ गई हैं और बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम दे रही हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करती हैं, बहुत कमाल के रेडियो प्रोग्राम करती हैं। मैं उनके प्रोग्राम सुनती हूँ तो उनको सराहती हूँ कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि औरतें आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, तो ये भी एक बड़ी खुशी वाली बात है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी एक पॉजिटिव नोट। तो आइए आपको ये प्यारा सा गीत सुनाती हूँ।

तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है. हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन. प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड एंजॉय योर टाइम. व्हाट एवर यू डू एंड मस्ट डू सम एक्सरसाइज. गिव योरसेल्फ सम टाइम. अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए अपनी देखभाल करने के लिए. प्रोग्राम बनाना चाहिए, अपने खाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए. अगर आप अपनी देखभाल करोगे तो आपके आसपास वाले भी, दुनिया वाले भी आपकी जरूर देखभाल करेंगे. सो इसी नोट के साथ नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वार्थ फला.

0: से ही क्यों छुपाते हैं, दुआ पे बात है लेकिन सुनाना टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो। असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी। शायद
1: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानने लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: This program is a proud member of the Canadian Punjabi Broadcasters Association, CPBA.
1: विजिटर टू कैनेडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स बेस्ट प्लान्स अते बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% दा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हुणे कॉन्टैक्ट करो 647-400-6862

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मांग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना व्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप। If you want to know about Supervisa Insurance and their best rates, best plan and best options for your parents and grandparents on 40-45% discount, so contact today 647-400-6862 Harjinder Gill.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

मैं सोच रहा हो सकती है, सब दी आपो अपनी सोच है, लेकिन जिहड़ा इस दा पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो आउंदे साल दे विच ज़्यादा वधिया जिहड़ा वो लग रहा है जी। जुड़े हो तुसीं प्रोग्राम नज़रिया दे नाल, मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल, कोई भी गलबात तुसीं मेरे नाल स्टूडियो करनी होंदी है तो 416-669-1313 जां 82-97 ते कर सकदे हुंदे हो। प्रोग्राम तो बाद विच फोन करना होवे, कॉल करनी होवे ते फिर 416-669-1313 मेरा टैलीफोन नंबर है जी। और एक बारी फिर रिमाइंड थानू करवा दिए कि अज पंजाबी विरसा 2026 जिहड़ा वो होण जा रहा है, जिसनों तुसीं द थिएटर एट ग्रेट कनेडियन कसीनो रिजोर्ट जो वुडवाइन रेस ट्रैक दे बिल्कुल नाल है उत्थे उसनों तुसी मानना, 6 बजे डोरस ओपन हो जाने ने, 7 बजे शार्प जिहड़ा प्रोग्राम है वो शुरुआत उसकी हो जानी है। सो बी ऑन टाइम, उहदे नाल की है कि तुसी कुछ भी मिस नहीं करोगे, प्लस जिहड़ी अज दी जिहड़ी एडवांटेज है जी इस शो दी वो इसनों रिकॉर्ड किया जाना है। इस साल का जिहड़ा पंजाबी विरसा है वो साढ़े इत्थे टोरंटो वाला शो जो कि अज हो जा रहा है वो रिकॉर्ड होना है, तो तुसी ऑन टाइम पहुँचोगे तो डेफिनेटली वधिया होएगा जी थोड़े वास्ते भी। तो 6 बजे डोरस ओपन हो जाने ने, 7 बजे शो की शुरुआत हो जानी है। अगर तुसी टिकट हाले भी नहीं खरीदिया तो फिर ticketmaster.ca ते जाके जे अवेलेबिलिटी है जी इस वेले तो वो तुसी ग्रैब कर सकते हो। जे कोई जानकारी लैनी है तो फिर 646-400-6862 ते जां 416-300-4600-4444 ते कॉल करके लै सकते हो। तो अज आप इस शो जिहड़ा शाम नू पंजाबी विरसा 2026 नू आप मानना जी। साड़ी गलबात का हिस्सा थोड़े तक पहुँचाने दे विच ऑप्टिकल वन सानू मदद करता हमेशा ही, 905-455-0752 ते उन्हां दे नाल संपर्क किया जा सकता है। पंजाबी बाय नेचर 416-937-2061 ते उन्हां दे नाल गलबात तुसीं कर सकते हो। ट्राई सिटी प्रोफेशनल रियल्टी ब्रोकरेज तो अवतार सिंह जी बडियाल 416-464-2067 ते गल की जा सकती है। किंग टोइंग 416-677-2222 ते संपर्क किया जा सकता। पूरे नॉर्थ अमेरिका दे विच किते भी ट्रक या कार टो करवाना पैंदा, ट्रकिंग दे विच अगर ट्रक या ट्रेलर टो करवाना तो पूरे नॉर्थ अमेरिका दे विच, अदरवाइज़ विद इन कैनेडा जे कार भी थानू टो करवानी पैंदी है तो फिर 416-677-2222 ते संपर्क किया जा सकता। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 ते गल की जा सकती है। 905-678-1200 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। दुनिया भर दे विच किते भी तुसीं ट्रैवल करना है जां फिर थानू किते हैल्प दी जरूरत है जिहदे विच तुसीं अपने लैंडेड पेपर संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करनी है, सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, पीआर कार्ड रीन्यू करवाउणा है, पासपोर्ट रीन्यूअल डेट तुहाडी आ गई है, प्लेस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट थानू चाहिदा जां इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना है तो उहदे विच वी तुहाडी मदद कर देंदे ने कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल वाले। 905-678-1200 टैलीफोन नंबर है जी। ड्रीम होम अपलायंसिज 905-805-3000 ते उहनां दे नाल संपर्क कीता जा सकदा। साडे प्रोग्राम दा हवाला दिओगे तो एक एक्सट्रा डिस्काउंट थानू जरूर दे दिता जाणा ड्रीम होम अपलायंसिज दे वल्लों। 3815 अर्जेंटिया रोड यूनिट 2 मिसागा दे विच लोकेटड ने। 905-805-3000 टैलीफोन नंबर है जी कटारिया माफ़ करना जी ड्रीम होम अपलायंसिज वाले दा। ते गिल स्वीट फैक्टरी दे हैड ऑफिस तुसी कॉल करनी है 905-799-2616 टैलीफोन नंबर है। प्रीमियम आटो रिपेयर एंड जूस कार सेल्स तो गुरप्रीत अड्डा जी 416-747-8800 ते संपर्क किया जा सकता है। राजधानी स्वीट्स .ca ते जाके अपनी नेड़े दी लोकेशन जां फिर होर कोई भी उन्हां दी जानकारी दी थानू जरूरत है तो राजधानी स्वीट्स .ca ते जाके तुसी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मेरे नाल कोई भी गलबात तुसी प्रोग्राम तो बाद विच करनी होवे ते 416-669-1313 ते कर सकते हो। प्रोग्राम दे संबंध विच जां फिर रियल स्टेट संबंधी कोई भी जानकारी थानू चाहिए है, कोई भी प्रॉपर्टी तुसी खरीदनी है, वेचनी है, रेजिडेंशियल है जां कमर्शियल है, लीज ते लैना चाहुंदे हो जां लीज ते देना चाहुंदे हो तो साढ़े नाल हमेशा ही संपर्क किया जा सकता हों। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है जी। और सानू कुछ एक स्पॉन्सर की भी जरूरत है, ये भी तुसी साढ़े नाल संपर्क कर लेना 416-669-1313 या फिर 647-400-6862 ते
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ

0: रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ क्लासेस कुछ कोर्सेज ऐसे जिनमें टीचर है ही नहीं।
1: ढाई साल बाद मुड़ना स्टार्ट करना,
0: बिल्कुल जी,
1: 2.5% इंटरेस्ट रेट पूरे साल का,
0: पूरे साल का 2.5%। और मतलब
1: इसमें मतलब जी 2 लाख लोन आते हैं उन्हें कितना वापस करना
0: उनका, मान के चले उनकी किस्त बनेगी महीने की कुछ $700
1: इंटरेस्ट रेट 2500
0: $100
1: पर किस्त दे विच होता हूं साल दा, जे लाख डॉलर पिछे देखी लोन
0: साल का $1200 बैठ
1: जी 1200 लो बस,
0: बिल्कुल जी यही है। इसलिए बहुत लोग की आराम नाल देखो आप रीफाइनेंसिंग कराओगे, इक्विटी है नहीं घर में आपके, नकली कागज बनाओगे, कमीशन दोगे 2 नंबर में, अंडर द टेबल ओवर द टेबल पैसे दोगे, फिर बाद में डरोगे कि भैया पकड़े ना जाए। साफ काम करो, साफ तरीके से करो, 1-2 काज, सारे असली कागज लगते हैं, फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, लोन ज्यादा आता है आपके खाते में,
1: नंबर बोल दो
0: इसके अंदर, नंबर हमारा फीस काम होने के बाद 199 नंबर 437-234-71 प्रॉपर ऑफिस है जी 1000 square feet का, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, 7 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, 8 साल में बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं। 437-234-71 हुने कॉल करो, एस्टीमेट लो 437-234-71।
1: लो दोस्तों कॉल करके कॉल देते इन्होंने दस देना कि तुसी एलिजिबल हो, किन्ने पैसे लिए एलिजिबल हो, बाकी तुहाडे मन च होर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट कॉल कर लो 437-234-71 437-234-71। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। सो आओ तुहानू लैके चलीए ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंस ते। सुल्तान जी सत श्री अकाल जी, आयां नू वेलकम, एक बार फिर दिओ सुनेहा क्योंकि 7 बजे तक तुहाडा स्टोर ओपन आ, 3 घंटे रह गए ने। जो जो अज आ रहा अपलायंस लई टीवी लई की फायदा हो रहा है?
2: बिल्कुल भला साहब, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते इस वक्त भी जी 3-4 फैमिलीज शॉपिंग कर रही हैं। जदों असीं फैमिली दी गल करदे हां ते उहदे च 3-4 परसन दी फैमिली हुंदी है। सो इस टाइम टीवी सैक्शन दे विच जिहड़े भी असीं स्पैशल प्राइसिस दे रहे हां उहदे च 85 इंच सोनी ब्रेविया मॉडल लैणा ते सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा लेटेस्ट अपडेटेड, जिहड़ा कि $2200 तों $1599 दा। जे 98 इंच लेना सैमसंग मिलेगा $3500 तो $1999 का। जे 50 इंच ले गए तो 50 इंच $299 का, 55 इंच $399 का, 65 इंच $599 का, 75 इंच $699 का। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से आज शाम 7 बजे तक अवेलेबल है। पेमेंट 6 महीने की करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है जी 905-450-2828 नंबर है। brampton appliances.com ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਡਲ ਪੈਕੇਜਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬੰਡਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ $2000 ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3-piece ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ $5000 ਵਾਲਾ $2999 ਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ $2999 ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਪਰਾਈਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ $1400 ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ 799 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵਾਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 599 ਦੀ, ਕੱਲਾ ਡਰਾਇਰ ਲੈਣਾ 499 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ $2500 ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ $1799 ਦਾ। ਵਾਸ਼ਰ ਵੀ ਸਟੀਮ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਵੀ ਸਟੀਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ ਹੈ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ। brampton appliances.com ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਪ ਸਾਡਾ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ 905-450-2828 905-450-2828 ਜੀ।
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਦਾ ਮੈਪਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਲਈ, ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਲਈ, ਪੋਸਟ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿੰਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜੰਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਵਾਕਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਸੋਫਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਮੈਪਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ 647-286-0077 647-286-0077 647-286-0077 0077 647 286 0077 ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਮੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
3: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530
4: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
5: Har ek jazbaat ko dua nahi milti. Har ek aarzoo ko zubaan nahi milti. मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती नमस्कार आदाब सामीन बहुत से जज्बातों एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं प्रीत आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं महसूस करेंगे

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: रेडियो शो।

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 दैट्स 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

से मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

कई बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है, दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले उसे।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदी हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू विल लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदातना।

0: आप ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You are listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32 55 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

चलिए इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यहीं खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609। With that, I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, देवता अतले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई, स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
3: टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं अग नहीं लगेगी। शायद
4: अपने परिवार की रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो, यकीनी बनाओ कि ESA परमिट हासिल करन। होर जानने लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वालों एक सुनेहा।

0: ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: study visa express entry canadian express entry spousal file parents pr super visa nanny work permit farmer investor ya self employed di file gal ki immigration di har problem da solution lain layi community de jane pehchane ate tajrubekar immigration consultant gary wirk nu milo
3: koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya hove immigration da koi vi masla hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha cic immigration hune hi call karo 416-456-66
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381
4: ਨਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-456-3381 416-456-3381

क्या बात है यार, मैं कहना कमाल ही नहीं। सो चमकीला साहब का कोई भी गीत मैं कहना ना कि जो मर्जी तुसी चाक के सुन लो, ते लगता कि बस गाना फ्रेश ही बनया हो। सो वधिया, देखो इदां दे गाने, इदां दे आर्टिस्ट ये मुड़ के नहीं आते, एक बारी जमदे ने ते इन्हां दे गीत फिर सदाबहार मैं कहना सदियां तक चलते रहिंदे ने। हुण भी सुन लो ते अज तो भी 50 साल बाद कढ लियो, मैं वादा करदा कि ये गाने कदे पुराने नहीं होंगे। GTA क्रेडिट वाले नूं याद रखो, जे सिर कर्जा चढ़ गया ज्यादा तां GTA क्रेडिट दे रेखा अते नदीम जी नूं फोन कर लो। ये पिछले तकरीबन 25 सालों तो लोगों का कर्जा माफ करवाने दे विच मदद कर रहे हैं। GTA क्रेडिट दे रेखा अते नदीम जी नूं फोन कर लो। तुसी 416-650-1100 नंबर है, 416-650-1100, 416-650-1100। GTA क्रेडिट दे रेखा अते नदीम जी तुहाडे लई बिल्कुल हाजिर ने। एंड उस तों इलावा पैशन रूफिंग, हुण समर है, हुणी टाइम है यार रूफ दा, कोई भी काम होण वाला, थोड़ी नवीं रूफ लगन वाली है। आए ना कहो कि अगले साल ला लांगे, यार जे रूफ लीक हो रही है, रूफ डैमेज है, कानू तुसी डिले कर रहे हो, बाद चो होर कोई पंगा पै गया फिर पछताओगे। सो जदों टाइम होंदा ना ये चीज़ां दा तां करा लिया करो। पैशन रूफिंग 6479199413, फुली इंश्योर्ड कंपनी है, फ्लैट रूफ, शिंगल रूफ, कोई भी नवी रूफ या री रूफिंग है, रूफ की रिपेयर है। 6479199413, 6479199413 दे उत्ते कॉल करो। 647-919-94-13 ते संपर्क तुसी जरूर जरूर जरूर कर सकते हो। सो कोई भी गीत संगीत सुनना, साडा नंबर है स्टूडियो दा 9056733337, 905-673-3337 अपना फोन नंबर है, 9056733337। ते राजधानी स्वीट्स वाले की कहिंदे ने, आ जाओ फिर देखते हैं।

0: लीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: क्या बात है, राजधानी स्वीट्स एक हाउस होल्ड नाम, सो विजिट करो जरूर तुसी राजधानी स्वीट्स नू। उसे नाल नाल राजवंत कौर दा नंबर बड़ा मशहूर है, क्योंकि जेडे ना बंदे काम वधिया करदे आ ओह अपने आप मशहूर हो ही जांदे ने। वधिया काम करोगे ते थोड़ी एक जेडी वर्ड ऑफ माउथ दी रेफरेंस है ओह इन्नी हो जाएगी, थानू किसी होर चीज़ की लोड़ ही नहीं। सो राजवंत ऑटो होम ते कमर्शियल इंश्योरेंस विच मदद कर रहे ने। ये 25 तो वध कंपनियों नाल डील करते हैं ते थोनू 30% तक का डिस्काउंट लैके देंगे ने। सो गड्डियां घर की इंश्योरेंस नहीं घट रही, इन्हों कॉल करो, सारा होमवर्क करके वधिया थोनू टॉप दा इन्हां ने रेट लैके देना। सो राजवंत कौर 647-674-4735 647-674-4735 647-674-4735 तुसी राजवंत थोड़ा दे नाल जरूर गलबात करो ते थोड़े लिए बिल्कुल अवेलेबल है। सो गलबात थोड़ा ना मारदे एंड उस दे नाल नाल थोनू असी बहुत ही जल्द कुछ एक साडे स्पॉन्सर्स दे नाल जुड़ांगे। मैं थोनू अज क्योंकि है थोड़ा जिहा वधिया जिहा दिन, फ्राइडे है, कुछ एक की कहिंदे हुंदे आ अपबीट जी गाने सुनाउण दी पूरी कोशिश करदा। सो आजो सुणदे आ।